समय सूत्र देशनाव महाकारुणिक बुदुरजानन वहन्से विसिन लोक सत्वया वेत अनुकंपावेन देशना करन लद आरक्षक परित्राण देशना अतरें महा समय सूत्र देशनाव अति विशेष वूवकि तारका समूहयक पिरिवरा बेबलेन पूर्ण चंद्रयासे एदा कपिल वस्तु नगरा सन्ने महा वनपित एकालोक करमिन समस्त महा विश्वतलेम बुद्धाज्ञा चत्रेट हसु करमिन पवत्मन लद मे देशना विशेषेन्म सज्जायना किरिन्ने सम्यक् दृष्टिक देवी देवताओं वहन्सेला एल्म बेल्म आशीर्वाद अपेक्षा यदा बुदुरजानन वहन्सेगे श्रीपाद मूले गौरवाभिवादन पूर्वक दस दस चक्रावाट्यन सित सपमिनी महानुभाव संपन्न दिव्य गणया बुदुरतुन सरण गिय यम पिंबते वेनम ए आय किसीदा अपायगामी वन्नी नटे कियमिन बुद्ध प्रमुख श्रावक संग रत्नयट स्वकीय अत्यंत गौरवय पुदकलह मेवनाही विश्वगत दिव्य शक्तिन एकराशी करमिन जीवितेत एलेमिन सकलांतराय दुरुकुट सित शांतिय सलसी मेला महोपकारी वन परित्राण धर्मय की सियलु देवियन के आशीर्वाद पिनिस ए महानुभाव संपन्न महासमय सूत्रय सत है सितिन सज्जायने करुण लबन्ने पूज्य गणी कुमरे शांत स्वामी वहां